वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल आदाब, नमस्कार, की हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। सुनहरे जे मौसम दे विच सुनहरी जी आवाज दे नाल, सुनहरे जे प्रोग्राम दे नाल स्वागत स्वागत स्वागत, वी वेलकम यू ऑल।

0: वैसे ये भंगड़ा बीट वाले गाने दा ना स्वाद अपना ही है जिन्ना मर्जी तुसी कोई होर गाना ला लो जदों एक ऐसे गाने वजदे ने तां मल्लो मल्ली यू नो थोड़ा जा खून जिहड़ा है थोड़ा जा डबल रफ्तार दे नाल चलना शुरू हो जांदा दौड़ना शुरू हो जांदा डू यू एग्री एग्री करदे हो मैनूं लगदा है ना सतनाम जी सत श्री अकाल स्वागत की हाल चाल हां जी हां जी हेलो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी फिर दोबारा मिलायो ठीक है जी सतनाम जी की आवाज जी है मेरे तक तो पहुंची थी थोड़े तक पहुंची फिलहाल 905-564-444 प्रमोद जी फिर दोबारा कॉल कर लियो मेनू इंतजार रहेगा थोड़ी कॉल का गिल स्वीट फैक्ट्री प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग फॉर एनी ओकेजन मशीन मेड समोसे अवेलेबल ने हुन सो ऑल स्वीट्स जेडे ने कैनेडा दे विच जिन्ने भी थानू स्वीट्स दी थोड़ी जी यू नो क्रेविंग हो रही है वो थानू मिल सकते ने लाइव फूड ट्रक केटरिंग सारी ही ओकेशन वास्ते 6 लोकेशनस तो थानू सर्व कर रहे ने 2 इन्हां दीआं लोकेशनस कैलगरी दे विच ने 5 चलो फ्रेशको दे विच ने सो इन्हां दे तुसी जदों चलो फ्रेशको दे विच शॉपिंग करदे करदे भुख लगी आई तां फिर गिल्स स्वीट फैक्ट्री ते इक गेड़ा की लाणा उत्थों लंघोगे तुसी तुहाडे अपने आप ही दिल मल्लो मल्ली करेगा कि हुण समोसे भी पैक करा लिए हुण मना ए वी कर लिए हैड ऑफिस फोन नंबर नोट कर लो तुसी तां कि तुसी लाइव केटरिंग वास्ते ऑर्डर करना होवे तां नंबर थोड़े कोल होवे 905-799-2616 नंबर है जी गिल स्वीट फैक्ट्री वाले का 2131 विलियम पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे लोकेशन है जी ते इस लोकेशन ते जाके तुसी ऑर्डर कर सकते हो ते अपनी जिहड़ी केटरिंग करानी है वो वधिया वधिया करवाई जा सकती है हेलो जी सत श्री अकाल 1695
1: चांदनी
0: रात चांदनी रात
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी फिल्म विच
0: मौसम खिड़दा जा रहा है देखिया कि ड्राइवेज क्लीन हो रहे ने सारे काम जिहड़े चेते आ रहे ने कि कोई भी काम कराना है तो मौसम जो अच्छा होवे धुप्पां शुप्पां लग जाण वधिया तो फिर सिटी परमिट्स थोनो ये ओमकार होम्स पॉल ग्रेवाल रेनोवेशन काम करके देंदे ने जी इंक्लूडिंग द ड्रॉइंग्स गार्डन सुइट्स बनवाने होन लीगल बेसमेंट बनानी होवे अपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ने है कंप्लीट कर चुके ने ओवर 20 गार्डन सुइट्स इन 2025 बिल्ड करदे ने कस्टम होम्स कोई भी तरह का कमर्शियल जॉब्स ऑफिस रेस्टोरेंट्स स्पेशल डिस्काउंट्स ने होम रेनोवेशंस ते इंक्लूडिंग $5,000 ते जे इफ यू बुक योर लीगल बेसमेंट या गार्डन सुइट इन द मंथ ऑफ वैसे हुण पुछे हुण इन द मंथ ऑफ केड़े क्योंकि ये मई का लिखा हुआ है पर आई एम श्योर कि हुण भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ऑफर के नाल 416-817-3600 नंबर तुसी फिर दोबारा नोट करो 416-817-3600 नंबर है जी ओंकार होम्स तो पॉल ग्रेवाल होरां दा जरूर कॉल करके इन्हां तो वधेरे जानकारी लेती जा सकती है अच्छा जी कैनेडा डे सेल कैनेडा डे बहुत अहमियत रखता है साढ़े वास्ते जिन्हें भी असं कनेडियंस है साढ़े वास्ते ब्रैम्पटन जिहड़ा है वो लैके आया जी कैनेडा डे की सैलीब्रेशन चिंगूजी पार्क दे विच सो सैलीब्रेट करो कैनेडा डे इन ब्रैम्पटन विद कंट्री स्टार ली ब्राइस कंट्री बैंड इमरसन ड्राइव चिंगूजी पार्क से लाइव कंट्री म्यूजिक होएगा फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होएगी चिंगूजी पार्क दे विच July 1st जिहड़ा इंजॉयमेंट की जा सकती है सिक्योरिटी मेजर्स मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यह उपराला कर रहे हैं जी यह थोड़े वास्ते ब्रैम्पटन्स एनुअल कैनेडा डे सैलीब्रेशन जी है चिंगूजी पार्क के वेनसडे July 1st हो जा रही है अपनी फैमिलीज में लेके आओ कम्यूनिटीज पहुंचन टूगैदर वील हैव फुल डे ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज फूड फायरवर्ड एवरीथिंग विल बी देयर लेकिन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी सेफ्टी ते सिक्योरिटी सो 12 बजे तो लैके राती 10 बजे तक सो दोपहर 12 बजे ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੂਡ ਦੇ ਟਰੱਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਟਸ ਐਨ ਆਫ ਫੋਰ ਦੈਮ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚੰਗੋਜ਼ੀ ਪਾਰਕ 9050 ਬ੍ਰਮਲੀ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ July 1st ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਲ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ ਸੋ 6685 ਟੋਂਕਨ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਟੋਂਕਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਸੋ ਬਿਗੈਸਟ ਸੇਲ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸੇਲ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਤ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਫਰੀ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਗਿਫਟਸ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਫਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 6472620006472620000 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਸੋ 6472620000 40 ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ

0: कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को सदाशिव निरंतर।

0: सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवक्षाम कुंजिका स्तोत्रम्
1: यहाँ से आपको थाका चुन्नी मेहंदी जागो और सिदोली तक का सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
0: दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो। अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप मास्टर कोलिजन डिपो .ca पे और मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाइए। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए आज ही उनको कॉल कर लीजिए। 416-524-8004-16-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों में छुट्टियां हो गई हैं तो जरूर आप घूमने निकलेंगे। कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी
1: शुभकामनाएं। मुड़के नहीं हो जमना मामा कर पंजाब की तरफ।

बंटी लाल की बंटी बज गई जा बड़ा पटियाले मोती बाग से बारा दरी दे खर गया बिच बकाले तुरदा तुरदा पहुंच गया बाजार जुतिया वाले इधर मैं बरांडे वेके उधर वेके नाले देखी सारी दुनिया खुशे

ना पानी छुटिया हो गई टिकट पैर चलो इस तरह अगले शहर गड्डी चलती जाती आंदे जाते शहर मुड़के नहीं आ यमुना मामा सरपंच।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको सारी वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने चुना है। मौसम के से आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा के में भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे बड़े शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफा में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग आर्टिस्ट विल जॉइन देयर बॉयज एंड देयर टू सेट अप फॉर आवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए सिटी वेबसाइट, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही म्यूजिकल हॉर्सेस, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो दूर से तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है। तो होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज, खास करके आजकल समर है, तो आप topchoiceelectronics.com पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 9057900045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो एक बार फिर से आपका सामी और मैं हूँ आपकी होस्टिरा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जॉइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ नोवा
1: स्कॉटिश।

ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, इतना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।

होठों पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। ध्यान हो या अकल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों

0: पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉन्सर्ट हुआ था निर्मा का, तो मालिक यहाँ तो उनका बहुत बढ़िया मूवी था। मैं थिएटर में आकर किंगडम में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कनाडा डे क्यों मनाते हैं। कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन जुलाई 1867। On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, now Ontario and Quebec, into a single country known as the Dominion of Canada. So originally called the Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historic milestones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम याद करते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है यहाँ पे हम सभी को को कि अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का गीत सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होती है। तो आजकल जैसे लोगों को गाने पसंद है वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए से आ रहे हैं आगे, तो उनको भी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, मैं कोशिश करती हूँ आपको ये तो कम सुनने को मिलते हैं। तो आइए अब, अगर आपने कनाडा डे की आप अपनी सिटी में देखिए क्या क्या इवेंट्स होने वाली हैं।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-4046-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कलिजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और रफी साहब का बेटी।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब एंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।

0: के मालिक ने दुनिया बनाई न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे गा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ते रंगमंच ते सत्रह चावा ते मलहारा दा लोक रंग रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग हनेरे नू चानन दे रंगा नाल रुशना दा पंजाब पंजाबी दे रंगा दी मैका नू वंडदा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग
2: सुनना जरूर हर शनिवार रात 11 बजे तो 12 बजे तक 530 AM ते अपने होस्ट चमकौर सिंह दे नाल।

हाँ जी जरा एक वेबसाइट नोट करो afcgrocery.com एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट जिथों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी मठियाईयां ताजियां सब्जियां फल फ्रूट इंडिया वाले भांडे सजावट का समान सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना हुण एशियन फूड सेंटर की इस वेबसाइट ते देखो $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे विजिट afcgrocery.com

0: इको एक नाम नंबर 9 ऑटो सेल्स पिछले 35 सालों तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार एसयूवी वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन ले और ग्रेट सर्विस ले कॉल करो 905-450-0009 यानी 905-450-0009 या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
1: कनेडा विच 75 प्लस लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो 50 प्लस टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा
2: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो
1: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज शाही पनीर फ्राइज मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepo.ca ते ऑर्डर करो
2: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट pizzadepo.ca ते आज ही अप्लाई करो पिज़्ज़ा डिपो स्वाद विच टॉप टॉपिंग्स नॉनस्टॉप
3: आज खुश तो बात होगी
4: ओ ता होना ही है जदों तीनों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ऐं लगदा बणदा ही है
3: आज मेरे पास बिल्ले हैं प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
4: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
5: क्या कह रहे हैं पर
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
4: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा

0: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: ओ यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन.
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cart, Kela transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist.
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, haan bhai, ab badi highway da door pori hoi khadi hai, ki gal
7: aa? Accident ho gaya car da, tow truck ae nu phone kar lagi aa.
6: Oh, tow truck chhad, main sidha karda Skydome Auto and Body सेंटर वालों नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना होते।
7: आहो मैं सुनिया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी ने डील कर दिया, नाली हो मेरी कार दा मिशन टेस्ट करा दो, ने नमे टायर पवा दियो, उधरो ब्यूटी पार्लर जाना, उधरो कार दा पंगा, आ शेडी करो, स्काईडोम वाले नू फोन करो 905-874-9878.
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो, सोने दे सुहागे वाली गल हुंदी जे।
8: एशियन फूड सेंटर दिया सारी ही लोकेशन ते 26 जून तो 5 जुलाई तक लग चुकी है कैनेडा डे सेल। 4 पाउंड डीप बेसन 499, 900 ग्राम रेड लेबल टी 1299, 10 पाउंड इंडिया गेट प्रीमियम राइस 1299, ताज आटा 1199। इस तो इलावा ताजे फल फ्रूट, इंडिया वाले पांडे, दाला, सब्जियां, मिठाइयां आते होर भी सब कुछ मिलता जी अंडर वन रूफ। विजिट एशियन फूड सेंटर, कॉल 416-740-3262।
9: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल 416-662-1313 416-662-1313।

0: पिज्जा डिपो दी नवी पेशकश, लोडेड फ्रेंच फ्राइज विद बटर चिकन और तंदूरी वेजी पनीर, एक बार ट्राई तक करो।
1: पिज्जा डिपो दा पिज्जा, पिज्जा डिपो दा पिज्जा।
0: पिज्जा डिपो, कॉल 310-9711,
2: दैट्स 310-9711।
1: पिज्जा डिपो दा पिज्जा।
3: रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत सिंह जौहर ने कॉल की सी, पर उन्होंने पसंद कर रहे हैं। नाल फरमायश भी भेजी गई है केवल चौहान, सारा का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डे एंड रॉस कॉलरी तो साढ़े भाई तरसेम होनी इस समय ट्रक चला रहे हैं, हमेशा ही कॉल कर देते हैं जो जाते वीकेंड पर। मनजीत सिंह सी डबल्यू हैंडरसन वाले वो भी याद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे का। अज मैं एच के मूवर्स से भी जाने का मौका मिलया, वेयर हाउस देखा, क्या बात है। जिमें कि ऐड उन्होंने अपने पिछले लंबे समय तो चल रही है, तो बड़ा वधिया काम है। जिथे भी तुम मूव होना कनेडा च, कितने भी अमेरिका च, इंटरनेशनली तौर पर थोड़ा उन्होंने मूव करा देना, कारा भी थोड़िया शिप कर देनिया जिथे कहोगे। बहुत ही वधिया उन्होंने पास फ्लीट है, समान तुम स्टोरेज करवाना वो भी हो जाएगा। बड़ी वधिया टीम है, समान तुम जिथे भी कहोगे उत्थे ही टिकाउणगे, तो टुटण भज्जण तो भी बचाउणगे, क्योंकि काम ही इन्ना वधिया पिछले 25 साल तो। नंबर है 416-527-6704, 416-527-6704 ते तुसी कॉल कर लो हरमिंदर होना नू। बड़ा वधिया काम है, कितने भी तुसी मूव होना है, बेसमेंट चो घर जाना, अपार्टमेंट चो जाना, नवा घर लिया, छोटे घर जाना, वड्डे जाना, ये थोड़ी मर्जी है। जिथे भी जाना मूव करवाना तुसी, बड़ा वधिया काम करते हैं ग्रंटड एच के मूवर्स। बेस्ट रेट है, बेस्ट सर्विसेज है, आवरली रेट भी कर सकते हो, फ्लैट रेट भी तुसी कर सकते हो। सो नाम है एच के मूवर्स, पिछले 25 ईयर्स प्लस, 416-524-6704 ते तुसी कॉल कर सकते हो। रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग, मैंने हमने कॉल आई मैसेज, कहते तुसी जिहड़ा ऐड बोल के पैसे भेजने द्वारा बोल दो। हमिल्टन तो बाई जी उन्होंने, मैंने बलजीत ने कॉल की, लो बाई जी मैं हम बोल ही दिना, तो मैसेज भेजे उन्होंने, कहते प्रोग्राम सानू बहुत वधिया लग रहा। नंबर मैं दोबारा फिर बोलता, आर्मी ट्रेडर्स इंडिया नू पैसे भेजो चाहे मंगवाओ, जो कहते उही हुंदा, पैसे थोड़े बिल्कुल लेट नहीं हुंदे, बहुत फास्ट एंड रिलायबल सर्विसेज है, रेट बड़ा वधिया मिलता। किसी भी तरीके नाल तुसी पैसे भेजने, ई ट्रांसफर, डेबिट, कैश, ड्राफ्ट नाल सारा कुछ उस तरह भेजणगे। नाम है आर्मी ट्रेडर्स इन ब्रिमटन, 1900 क्लार्क बुलेवार्ड, यूनिट 7 ब्रिमटन के विच है। इन्हें ऑफिस में विजिट कर लो हफ्ते 7 दिन, या कॉल करो, वट्सएप से भी कॉल कर सकते हो, सेम नंबर है 1-1-905-671-3770, तो सीधा भी तुसी डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9056713770। आर्मी ट्रेडर्स इंडिया नू पैसे भेजने लिए, मंगवाने लिए 905-671-3770। लो हेडलाइनस आप थोड़ा ला दी, लेटैसट न्यूज़ पंजाब दी जिहड़ियां ने, भी ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4-5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਆਸੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-662-1313, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, 416-662-1313।
4: ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਝੜਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼। IGPC ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ

0: ਖੇਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ।
1: Offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
6: Oh, haan bhai. अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल
7: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक ए नु फोन कर लगी आ।
6: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वालेयां नु, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउण जाना उत्ते।
7: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी ने डील कर दिया, नाल ही हुण मेरी कार दा मिशन टेस्ट कर दो, ने नवे टायर पवा दियो, उधरो ब्यूटी पार्लर जाना, उधरो कार दा पंगा। आ छेड़ी करो, स्काईडोम वाले नु फोन करो, 905-874-9878।
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो, सोने दे सुहागे वाली गल हुंदी जे।
8: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच, अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल, 416-602-1313, 416-662-1313।
9: ब्रैम्पटन दे विच इक्को एक नाम, नंबर 9 ऑटो सेल्स। पिछले 35 सालों तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार, एसयूवी, वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009, यानी 905-450-0009, या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
10: हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ए है जी एशियन फूड सेंटर दी ब्रांड न्यू वेबसाइट, जित्थों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मठियाइयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट दा समान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर दी इस वेबसाइट ते देखो, $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे। विजिट afcgrocery.com।
9: ब्रंट

0: की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: तो यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन। HK Movers, home, offices, apartments.

0: कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ। उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को सदाशिव निरंतर।

0: सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी वक्षामि कुंजिका स्तोत्रम्
1: चुन्नी मेहंदी जागो सिदोली तक का सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांटन टेलीफोन 905-799-9400
0: दुर्गा पाठ फलम लभे अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो। अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए प्रिंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप मास्टर कोलिजन डिपो डॉट सी ए पे और मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पे जाइए। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए आज ही उनको कॉल कर लीजिए। 416-524-604-1652-46704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो जरूर आप घूमने निकलेंगे। जुलाई फर्स्ट है, कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: मुड़के नहीं हो जमना मामा कल पंजाब।

फिर प्रिया हम जाने ना कोई जाने ना पहचाने कोई जराबा कोई प्रेशर कोई बुने दुनिया ना आगे अधीरत गुंजल तो मामा नैना चले पुत्रा अगले शहर चलती जाती आंदी जाते शहर मुड़के नहीं जमना मामा सरपंच।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको सारी वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने चुना है। मौसम के से आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा के भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे बड़े शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफ में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग आर्टिस्ट विल जॉइन देयर बॉयज एंड देयर टू सेलिब्रेट फॉर आवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए सिटी वेबसाइट, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही म्यूजिकल हॉर्सेस, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है। तो होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप

टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज, खास करके आजकल समर है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 9057900045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका शर्मी और मैं हूँ आपकी होस्टरा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जॉइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ नोवा
1: स्कॉटलैंड।

रुची है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हंसती है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, इतना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।

होठों पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। बोल हो या दिल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों

0: वहीं पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉन्वेंट ऑफ थंडर मारा, तो मालिक यहाँ तो उनका बहुत बढ़िया मूवी था। मैं थिएटर में जाकर किंगडम में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कैनेडा डे क्यों मनाते हैं। कैनेडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1, 1867। On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, now Ontario and Quebec, into a single country known as the Dominion of Canada. Though originally called the Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historic Michael Stones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम याद करते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे हम सभी को को कि अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का गीत सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होती है मिलता है। तो आजकल जैसे लोगों को गाने पसंद है वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए से आ रहे हैं आगे, तो उनको अभी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, मैं कोशिश करती हूँ आपको भी गाने तो आइए। अब अगर आपने कनाडा डे की आप अपनी सिटी में देखिए क्या क्या इवेंट्स होने वाली हैं।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है खैर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, एच के मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-6704-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कोलिजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का बेटी बेटी।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब एंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।

0: अगर नूर तेरा न आता जहां में तो रखा ही क्या हाँ जमीन आसमान में तो रखा ही क्या हाँ जमीन आसमान के मालिक ने दुनिया बनाई न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे इजा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

तन मन सौंपै कंत कहो नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार से जय कंत नाये विकार महला तीजा तन पर एह न आखियान

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर, चढ़दी कला वाली सवेर, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू

0: मिट्टी दी खुशबू पंजाब दा रंग रंग पंजाबी अपनियां दा प्यार सच्चे जज्बातां दा इकरार
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो रंग पंजाबी।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिहा क्यूट जिहा घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सच मुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे जी, चढ़दी कला च रहो। तुसीं साडी दिली अरदास हमेशा ही हुंदी है। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने उन्हां नूं भी निघी जी आखदे हां, क्योंकि अपना साथ है। एतवार वाले दिन रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल 12 बजे बन जांदा है। 12 to 1 रामस पंजाबी ते 1 to 2 तुसीं सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, और इन्हां प्रोग्राम्स के दौरान साढ़े नाल स्टूडियो च गलबात करन वास्ते टैलीफोन नंबरस हुंदे ने 416-233-7368 जां फिर 8297-416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हमेशा ही हो सकती हुंदी है। और साडी गलबात दा हिस्सा तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच मदद ऑप्टिकल वन दे वल्लों मिलदी है। 905-455-0752 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। पंजाबी वन नेचर 416-937-2061 एयरपोर्ट नेसा 905-791-9900 ते गल तुसीं कर सकदे हो। किंग टोइंग 416-677-2222 टैलीफोन नंबर है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-688-1200 ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 ते गल कीती जा सकती है। ड्रीम होम अपलायंसिस 905-805-3000 टैलीफोन नंबर है जी। तो प्रीमियम आटो रिपेयर एंड जूस कार सेल्स तो गुरप्रीत ढाडा जी 416-747-6800 ते तुसीं गल कर सकते हो। गिल स्वीट फैक्टरी ओवरऑल जे कैनेडा भर की गल करिए तो 6 लोकेशनस तो सर्विस देंगे ने, लेकिन साढ़े जी टी ए दे विच 4 लोकेशनस ने जी उन्हां दियां। तुसीं हैड ऑफिस से कॉल करके जानकारी हमेशा ही ले लैनी है। 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है। 9057992616 गिल स्वीट फैक्टरी वाले का टैलीफोन नंबर है। बाबा नज़मी होरां नूं फिर याद करते हैं जी। वह कहिंदे शीशे उत्ते धूड़ां जमियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जल्दां सांभ रहे ने झले वरके पाड़ी जांदे ने, उन्हां दा भी तुईओ रब्बे इहदा अज जवाब तां दे, ईदां वाले दिन भी जिहड़े करन दिहाड़ी जांदे ने, जिन्हां दे गल लीरां पईआं उन्हां वल्ले तकदे नहीं, कबरां उत्ते तिले जड़ियां चादरां चाढ़ी जांदे ने, रस्सी कित्थों तीक करेंगा ढिल्ली उन्हां लोकां दी जिहड़े इक हवेली बदले झुग्गियां साड़ी जांदे ने, शीशे उत्ते मले स्याईयां हक ए मेरे दुश्मन दा, सज्जणा नूं की बणियां मेरे फुल ताड़ी जांदे ने। चलो ए बाबा नज़मी अपने पिंडां नूं मूँह मोड़ लईए, शहरां दे वसनीक तां अपने शहर उजाड़ी जांदे ने।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई
0: हाँ
1: तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए है बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां भी करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करते होंगे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं पावे कुछ भी दे दे ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार
1: सिर जरूर पाड़ सकता बाकी गल्लां दियां गल्लां
2: मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं जे चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तात्रे नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकता है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने ते सानूं वी खिच पैंदी है कि असीं वी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी। सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड। उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है। काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जीडिया यह होंगे ने टाइम बीइंग वास्ते यही जीडिया सेल लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं। वो फ्री गिफ्ट जड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी। जिवें सिद्धू साहब दस रहे थे कि तुम पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो। की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते हैं जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही हूँ जी मनु शर्मा होना का कि थोनों पता है कि ओंटारियो के ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे हैं। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेज लई नवे फैसले न्यू डिसीजनस करने पास करने पै सकते हैं। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझते हो कि ये बदलाव जड़ा है ये चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली की सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो। सही कवरेज होना उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो बिजनेस इंश्योरेंस ले बैटर कवरेज चाहते हो रेट्स बहुत अच्छे लग रहे हो तो मनु शर्मा होर का नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर का नंबर भी थोड़ा दे दें। कहते कार रिपेयर करते हैं असी तो ऐसी नवी नवेकली कार बना दें तो पता ही नहीं चलता। प्रोवाइड कर रहे हैं नवे समर टायर्स चेंज करते हैं टायर्स व्हील अलाइनमेंट करवानी हो हर तरह का सस्पेंशन का काम करना हो इंजन का काम करवाना हो ब्रेकों का काम करवाना हो एग्जॉस्ट का काम करवाना हो ऑयल चेंज करवाना हो रस्ट प्रूफ करानी हो गड्डी तो बस फिर ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हों के कोल जाते हो तो एक प्लस पॉइंट यह है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी सो थोड़ा कितने भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हूँ उत्थे जाके किमें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊँगा मैं कितने होर जाना तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर तो तुसीं गेड़ा जरूर लगाओ 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड का इंटरसैक्शन है जी होम डिपो दे लागी है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726 नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।